अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है, ये सिर्फ मेरा पागलपन है।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड। Hey, sorry, brother. Actually, she's my wife, and she's mentally unwell. अब कुछ भी याद नहीं है उसे. सब कुछ भूल चुकी है. बस राज राज करती रहती है. पता नहीं कौन है ये राज. Anyway, sorry, bro. I'll take your leave, okay?
2: जवाब मिल गया मुझे. तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए